वापस आ गया स्टूडियो दे विच ते तुसी सुन रहे हो सांझी आवाज़ रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न तुहाडी अपनी होस्ट एंड दोस्त तनु दे नाल। शिव कुमार बटालवी उन्हां दी एक कविता या कर्ज तुहाडे नाल सांझी करदे आ। की लिखदे ने उह, कहिंदे अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, तेरे चुम्मण पिछली संग वर्गा, है किरना दे विच नशा जिहा किसे छीमबे सप दे डंग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। मैं चौंदा अज दा गोरा दिन तारीख मेरे ना कर देवे, मैं चौंदा अज दा गोरा दिन तारीख मेरे ना कर देवे, ए दिन तेरे अज रंग वर्गा मैनू अमर जिहा विच कर देवे, मेरी मौत दा जुर्म कबूल करे, मेरी मौत द जुर्म कबूल करे, मेरी कर्ज तली ते धर देवे, इस धुप दे पीले कागज़ ते दो हरफ रसीदी कर देवे, इस धुप दे पीले कागज़ ते दो हरफ रसीदी कर देवे। मेरा हर द्यों दे सिर कर्जा है, मैं हर द्यों तो कुछ लैना है, मेरा हर द्यों दे सिर कर्जा है, मैं हर द्यों तो कुछ लैना है, जे जरबा देवां बइयां नूं तां लेखा वधदा जाणा ऐ, मेरे तन दी कल्ली किरन लई तेरा सूरज गहने पैणा है, तेरे चुल्ले अग ना बलनी है, तेरे घड़े ना पाणी रहणा ऐ, ए दिन तेरे अज रंग वर्गा मुड़ दिन दी वी मर जाणा ऐ, ए दिन तेरे अज रंग वर्गा मुड़ दी दिन दी वी मर जाणा ऐ। मैं चौंदा अज दा गोरा दिन अन्याई मौत ना मर जावे, मैं चौंदा अज दा गोरा दिन अन्याई मौत ना मर जावे, मैं चौंदा इस दे चानण तो हर रात कुलैणी डर जावे, मैं चौंदा किसे तिजोरी दा सप बन के मैनू लड़ जावे, जो कर्ज मेरा है समया सिर ओ बेशक सारा मर जावे, पर दिन तेरे अज रंग वर्गा तारीख मेरे ना कर जावे, पर दिन तेरे अज रंग वर्गा तारीख मेरे ना कर जावे, इस धुप दे पीले कागज़ ते दो हरफ रसीदी कर जावे, इस धुप दे पीले कागज़ ते दो हरफ रसीदी कर जावे। सुनदे आ प्यारा जिहा गीत, फिर वापस आउंदे आ स्टूडियो दे विच ते गल्लां करांगे कुछ तुहाडे नाल सांझियां।

0: मैं तैनू किन्ना चाहनी आ।
1: An adventurous spirit needs strong immunity. Aptimal

0: वापस आ गए स्टूडियो दे विच ते तुसी सुन रहे सी 88.9 विन एफएम ते प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न शमा एंड तानु दे नाल। असी उम्मीद करते हाँ कि तुहानू अज दा प्रोग्राम वधिया लग्या होवेगा। दो घंटियां दा सफर तुहाडे नाल किवें लंघ गया सानू पता ही नहीं लग्या ते असी उम्मीद करते हाँ कि तुसी अपना लोंग वीकेंड इंजॉय किया होगा। इजाजत लैंदे हाँ अज लई तुहाडे तो इस वादे दे नाल कि अगले हफ्ते फिर मिलांगे। तद तक लई हसदे वसदे ते खुश रहो ते सुनदे रहो सांझी आवाज़ रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न।
1: हाँ जी, ते जिन्ना कु हुण तुहाडा लोंग वीकेंड रह गया जरूर इंजॉय करो ते मिलदे हां तुहानू वीरवार नूं सवेरे 8 बजे तो लैके 10 बजे तक। सुनदे रहो सांझी आवाज़ रेडियो, आवाज़ दिलां दी।